बड़ा के शैल बड़ा के मिठा गीत सुनिए नंद गया त्यास गल करा दे ही जम्मू प्रदेश दी ते मैं आ तुंदी आरजे नेहा शर्मा ते जदों राजे ने दिखिया ते उन्हें फिर उस जगह ही बसाने दा निर्णय ले लेता। उस राजे दा नाम है राजा जी जम्बू लोचन ते उन्हें राजे दे नाम पर इस जुग्गर प्रदेश दा नाम पिया जम्बू, पर उन सरल भाषा च जम्बू बोलते बोलते जम्मू के हो गया। ते कनेही लगी तुसी कहानी? ये जिहड़ी कहानी है एक दंत कथाएं च एक है जिहड़े साढ़े वड्डे बजुर्ग असीं सुनांदे ने, असीं सुनी दी है अपने जम्मू प्रदेश के नाँ के पिछे का महत्व। तो इस कहानी का प्रभावित होइए मैं ये अपनी कविता भी लिखी ही। सच च गए इसी मंदरे का थां रखते हैं, इतने बड़ी बड़ी चमत्कारी जगहां ने, उनके बड़े बड़े महत्व ने, तो बड़े ही इतने लोग जड़े ने बड़े मिलनसार हैं, बड़े मेल भाव करने रोंदे ने। ये जिहड़ा शेर ते बकरी का उदाहरण है वह अज भी कुते ना कुते मेरे डुग्गर प्रदेश विद्यमान है। लोग बिना द्वेष भाव के रोंदे ने, कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते ने, बड़े गए प्रेम करने रोंदे ने। ते मैं प्रार्थना करनी हाँ ये प्रेम सदा इन्हें सारे लोगों च बने दागे रवे। ते तुस सुनो आज दे एपिसोड दा अगला गीत।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व कर देने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165
1: इंडियन पंजाबी बाजार 115 फादर टोबन रोड ब्रैम्पटन विच भारतीय ग्रोसरी दा भंडार इंडियन पंजाबी बाजार जिथे ताजे फल ते सब्जियां दालां मसाले ते आटा गल की थवाडी ग्रोसरी दियां सारियां लोड़ां पूरियां कीतियां जांदियां ने। तुसी उहनां दी मीट शॉप तों मच्छी चिकन ते गोट मीट भी खरीद सकदे हो। इन्ना ही नहीं मिठाइयां ते टेक आउट भोजन दा भी प्रबंध है। भारतीय ग्रोसरी मीट ते मिठाइयां लिस्ट दा इक नां याद रखो इंडियन पंजाबी बाजार

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 9054569900 इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586800

0: a medical insurance. Number hai ga ji 416-817-6500. This is Harpreet Saini, Charter Life Underwriter and Certified Health Insurance Specialist from Top Choice Insurance.
1: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात. HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल. वी ऑल्सो शिप कार्स. वी ऑल्सो डू स्टोरेज. 30 इयर्स एक्सपीरियंस. वी सर्व विद अ स्माइल. HK Movers गिव अस अ कॉल. मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704.
2: हासिल फ्री मूविंग के लिए HK Mover.
3: रेव सिंह कैनेडियन जंपर साडा अपना रेल्टर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वास्ते पूरी हिस्ट्री कट के प्रॉपर्टी दी पूरी खोज करने तो बार फिर तुहाडी प्रॉपर्टी लिस्ट कर दिया ने. रेव सिंह होम लाइफ सिल्वर सिटी दे एक्सपर्ट राइटर रेव सिंह. रेव सिंह दी तिखी नजर तुहाडी प्रॉपर्टी वेचण अते खरीदण विच तुहाडी हेल्प कर सकदी है. नवे प्रोजेक्ट दे माहिर अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे एक्सपर्ट रेव सिंह नूं फोन करो 647-740-9600 647-740-9600 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੈਲਟਰ ਰੈਵ ਸਿੰਘ.
4: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530. Punjabi Versa!

0: वकार खान साहब मेरी लाइन के ऊपर आ गए हैं और वकार खान साहब आपको पता सारे नु के रॉजर्स दिया डील्स दे माहिर है और ऑथराइज रॉजर्स दे नाल बहुत लंबे अरसे तो इन दे नाल टाई अप है और वकार खान साहब गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप
1: जी थैंक यू सो मच हरजीत जी सब लिसनर नो प्यार भरी सत श्री अकाल
0: जी सर सर
1: रॉजर्स जी मेरे को रॉजर्स जी बहुत ही बढ़िया प्रमोशन है असी टीवी इंटरनेट और होम फोन दे स्पेशल पैकेज प्रोवाइड कर दिया ओनली इंटरनेट दी भी स्पेशल प्रमोशन है 1500 और 2000 दी स्पीड वाले रॉजर्स इंटरनेट बहुत चीप प्राइस पर दिला देंगे
0: ठीक है
1: मेरे को रॉजर्स दी सेल फोन दे भी बहुत अमेजिंग ऑफर है कैनेडा यूएस अनलिमिटेड कॉलिंग मिले दी आईफोन और सैमसंग भी स्पेशल प्राइस पर अवेलेबल है प्लीज कॉल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन नंबर है 6478648000 असी 18 साल से रॉजर्स दे कॉर्पोरेट इम्प्लाई हाँ थोड़ा अकाउंट और एड्रेस चेक करके बहुत बढ़िया प्रमोशन दिला देंगे नंबर अगेन 6478648000
0: नंबर एक बार वकार खान साहब दोबारा दे प्लीज
1: जी अर्जी जी नंबर है 6478648000 6478648000

0: थैंक यू वेरी मच. मैं तो देख रहा सी सेक्शन डी सी सी दे विचों बी सी डी ए बी सी डी चार टिकटा निकलिया होने ही लिया उन्होंने डी सी सी सेक्शन दे विचों. ये स्टैंडर्ड टिकट है और इतने लिया टिकटा किसी सज्जन ने चार टिकटा होने खरीदी है. मैनू पता लग जाता राइट वे है ना प्रोग्राम पंजाबी विरसा. हैलो तीर तोड़े क्यों मेनू ए नी समझ आई हल तक.
1: हीर ने रांझे दे तीर तोड़ते मैं नवा ही रांझा जम पे तीर
0: नहीं ए बई सा बीबा बॉय है ना ना असि रखिया भरा का ना. बड़ी मेहरबानी वीरा जी थैंक यू वेरी मच. 905-673-33 देखो गल पता की है हसना खेडना बड़ा जरूरी गल है और मैं अगे भी जिक्र करता हूं कि इस शो दे विच तुहाडे नाल सिर्फ इस करके तुसी शो नूं सुनदे आ असी इस शो दे रवाने भी हाँ तुहानूं जिस वेले अपनी मां की गल की जाती है अपने प्यो की गल की जाती है अपने भैन भरावां दीआं गल्लां कीतीआं जांदीआं फिर तुसी रोने भी हाँ इत्थे है ना नाल मैं भी रोना तुहाडे क्योंकि अपनी सांझ है ना मैं अगे भी कहना सांझ है अपनी सारिआं दी ते इस करके आपां इक दूजे नाल प्यार दीआं कहिंदे हुंदे आ गल्लां बातां दे नाल प्रोग्राम नूं सुणदे आ. थैंक यू तुहाडा सारिआं दा.

0: गीत अब कहाँ मिलते हैं सुनने के लिए, ऐसे गीत तो बस गीतों में रह गए हैं। What a music man, I love it।
1: पथरीली राहों में
0: आ सुन लो ते अल्लाह, पथरीली राहों में कहिंदा जिद्दां दा मर्जी समा आवे बस तेरे नाल ही जिंदगी बतीत करनी है। What a lyrics man।

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। अच्छा मतिया, उम्मीद करते हैं कि तुहाडा दिन अच्छा गुजरिया होगा। साड़ी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के वतनों दूर तुहाडे लई पेश कीता जाएगा। सुखी निजर मनप्रीत जी तुहाडे लई, सॉरी किरण जी तुहाडे लई प्रोग्राम पेश करेंगे और मनप्रीत जी हिंदुस्तान तो खबरां तुहाडे लई लेके आउणगे। सूरज सिंह 6:03 आया ते 8:44 ते चले जाना। मामा चंद सिंह 9:05 शाम नूं आएगा ते 5:52 ते सवेरे जाना। अज दा तापमान 27 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड। कल नूं मोस्टली सूरज चमकदा रहेगा, तापमान 28 डिग्री। फ्राइडे नूं 29 डिग्री तापमान, सारा दिन सूरज चमकेगा। सैटरडे नूं मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड 27 डिग्री। संडे नूं बारिश पैण दे पूरे आसार नजर आउंदे ने, बदलवाई रहेगी, तापमान 26 डिग्री। मंडे नूं 27 डिग्री टैंपरेचर होणगे। पेट्रोल दी प्राइस अज 1 सेंट उपर जा रही है अद्धी रातों ते मंडियां दे भाव जिहड़े ने इह तुहाडे लई जनक जुलर दे सहयोग नाल पेश कीते जांदे ने जी। मंडियां दे भाव च अजे टोरंटो स्टॉक चेंज, डाओ, नैसडैक ते सोना थल्ले है। डालर ते क्रूड ऑयल जिहड़ा इस समय उपर चल रहा है। नवदीप बेंस लीड कर रहा है फंडिंग दी, जदों पैसे इकट्ठे करदा हुंदा जिहड़ा फंड रेजिंग, काफी ज्यादा इकट्ठे कीते हुए उन्हें ते जिहड़ी इलैक्शन है वह लड़न तैयार है कि उन्हें लिबरल वनियो अपना लीडर बनना है ओंटेरियो लिबरल लीडरशिप दे लई। एक गल है, इन्हें आपकी MP की कुर्सी क्यों छड्डी सी, वह बहुत जरूरी है पता करना। क्यों इतने तक कुर्सी बन के बह जाते, कोई छड़ता ही नहीं है, घड़ीस घड़ीस के लाने पैंदे आ। आपकी कुर्सी क्यों छड़ी सी, व्हाट्स द रियल रीजन। ये उवें ही है जिवें हुण तक नीना टांगड़ी अते हरदीप गरेवाल ने ना तो माफी मंगी है, ना कोई टिप्पणी की है। अजे तो उस टाइम चो वधिया सी, उह कहिंदा देखो जी आपां तो हो गई गलती, जिन्ने पैसे मैं खाधे टैक्स पेयर दे आ चुको। हुण इन्हां ने इत्थे कोई जवाब नहीं दिता, ना इन्हां ने किसे देसी अखबार ने खबर सांझी की है। व्हाट्स गोइंग ऑन मैन, यारी दोस्ती आपकी जगह खबर तो सांझी कर लो। एनीवे जाने आने स्टे ट्यून, बड़ी जल्दी हरप्रीत जी नाल भी गलबात करांगे। पहला चलते हैं टिक्का जंक्शन।
1: आर यू रेडी
0: टिक्का जंक्शन लई 6474294040। केटरिंग करानी है छोटी वड्डे फंक्शन लई, नो प्रॉब्लम 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम 6474294040। तुसी इन्हां दे बैंकुएट हॉल या लॉन्ज विच छोटी वड्डी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम 6474294040। 647-429-4040। मॉर्गेज सोल्यूशन दे गुरप्रीत समरा जी, तुहाडे मकान दी रिन्यूअल आ रही है, तुसी अपनी मॉर्गेज BC लैंडर तो हटा के A लैंडर नाल करवाउणी है और इंटरेस्ट रेट ते भी बचत करनी है। कॉल 905-460-9099। प्री अप्रूवल भी करवा के दिंदे हन तां कि कॉन्फिडेंस नाल मकान लै सकदे हो। 80-90 हज़ार रुपए नूं बनाउण लई चाहीदे ने, मकान लैण वेले इसका भी अरेंजमेंट कीता जांदा है। गुरप्रीत समरा नाल बैठ के डिस्कस करो। 2155 B स्टील्स एवन्यू नियर टॉप रूम यूनिट 32, 905-460-9099, 905-460-9099, 460-9099 इन्हां दा नंबर है। सज्जणा, रब कोलों मंगणा छड्डो, मेहनत करो, रब आपे देवेगा। जिस दिन रब मंगण ते आ गया ना, आखरी साह भी लै जावेगा।
2: बच्चियो, हां जी, मैंने एक गल दा जवाब दियो कि जदों बिजली चमकदी है, कड़कदी है, ते चमक पहला नजर आउंदी ते आवाज बाद च सुनाई दिंदी है, भला क्यों हुंदा इस तरह?
3: क्योंकि मास्टर साहब साडियां अखां अगे ने, कन्न पिछे।
2: लावा तेरे कन्ना दे पिछे।
4: फट्टे मुतेरे। ਪੂਰੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ?
5: ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾ ਚੱਲੀਏ।
4: ਧਰਮ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ?
5: ਗਿੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
6: ਬੇਦਾਗ ਸਰਵਿਸ। ਗਿੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਵਲ,
5: ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ, ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ ਤੇ ਬੈਸਟ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਵਲ,
6: ਸਰਵਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ।
5: 905-671-8400 ਔਰ 905-796-8800 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ gilltravels.ca।
0: ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ ਜੀ।
7: ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਲੋ ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਟੌਪ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ, ਕਾਲ 647-784-1213, 647-784-1213।

0: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
1: काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते, 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 Bowway Drive नियर चिंगोजी, कॉल 90।
3: The Must Societe clearance sale is on August 6th to 10th. Save up to 70% on furniture and decor from Must Societe and Jardin de Ville. 5 days only, 1270 Caledonia Road in North York, while supplies last. This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
4: संसार दे कोने कोने विच वसदे पंजाबियों तक विरसे दी खुशबू पहुंचाउंदा ए है वतनों दूर रेडियो। This is Watno Dur Radio.
5: Watno Dur Radio ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੁਖੀ ਨਿਜਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ वतनों दूर रेडियो सिर चुका है उन्होंने सारे दोस्तों जिन्हें अपनी कामयाबी के नाल इथों की धरती इथों के लोगों को दसिया है कि साड़ी शान वक्री। वतनों दूर हुण कैनेडा विच वसदे पंजाबियों लई पंजाबी संगीत पंजाबी जवान ते पंजाबी विरसे की खुशबू पहुंचाउण लई लैके आया है वतनों दूर रेडियो।
4: This is Vatno Dur Radio.

0: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਲਓ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰ। ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ ਅਪਡੇਟ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 15-15, 20-20, 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ।
1: बिल्कुल जी। सो पहले तो वो लोग बड़े अच्छे लकी रह गए जिन्होंने इसका फायदा लिया एंड स्किल भी हासिल कर रहे हैं और ग्रांट्स हासिल कर रहे हैं। ओके, अब जो रूल नए चेंजेस आए हैं उसमें लोन आएगा बिना क्रेडिट चेक के, बिना कोलैटरल के, बिना गारंटर के, और 0% पे है वो लोन। की रेंज है 50,000 से $200,000 तक। इसमें से लाइक गवर्नमेंट आपको दे रही है, बैंक नहीं दे रहा पहली बात, और इसमें कोई क्रेडिट चेक नहीं है, और गवर्नमेंट डायरेक्ट आपके खाते में लोन डालती है। स्किल डेवलप करें, आसान से कोर्सेज करें, फुली ऑनलाइन घर के कंफर्ट से, और फंडिंग लाइक 0% पे लोन हासिल करें अपने खाते में डायरेक्ट।
0: एक मिनट, 2 लाख तक लोन मिल सकता है?
1: बिल्कुल जी, 2 साल का कोर्स है, फैमिली ऑफ 4 या 5 है तो उनको अराउंड लाइक अगर किसी के 2 या 3 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, तो उनका बच्चे ज्यादा, खर्चे ज्यादा, तो गवर्नमेंट की फंडिंग भी ज्यादा कि अब घर का खर्चा चला पाए, बढ़ते बढ़ते सड़क पे ना आ जाए आप।
0: अच्छा, फिर 2 साल है 0% थे, कोई उधर पैसा नहीं देना, कोई किस्त नहीं होती?
1: बिल्कुल जी सही कहा, अगर 2 साल का कोर्स है तो 2 साल तक वो लोन 0% पे, और 2.5 साल बाद पे करना स्टार्ट करना है।
0: मतलब
1: आज से 2.5 साल बाद, और वो भी 15 साल में पे कर सकते हैं।
0: तुसी देखो जे ओ कहंदे तुसी दोनों हस्बैंड वाइफ लेने हो तां लोन 2 साल तक 2 लाख तुहानू देता, तुसी कोई पैसा नहीं पे करना, 2.5 साल बाद फिर पे करना शुरू करना, ओदी किश्त शुरू होनी आ। ते ए मतलब लोन हजे भी स्टिल मिलेगा है जी? ओ चीजा ओही ने कि जिवें पहला सीगा कि बहुते कोई क्रेडिट चेक नहीं होना, कोई क्रेडिट हिट नहीं होना, ते तुहाडी इनकम क्राइटेरिया, बाकी सारा कुछ वही है, जो कुछ भी चेंजेस आई है कुछ?
1: इसमें पहले हम फोकस करते थे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों पे, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउसवाइफ, अनएम्प्लॉयड, बट अब ऐसा कम नहीं है, मतलब अब और भी कैटेगरी ऐड होगी इसमें। मतलब अगर आप जॉब करते हैं फुल टाइम तो भी आपको एक बेनिफिट करता है, तो और इनकम जो फैमिली इनकम हम 70,000 कहते थे वो अब 90,000 तक है। मतलब अगर आपकी फैमिली इनकम 90,000 से कम है 2025 के एनओए में, 24 में नहीं, 2025 का एनओए आपसे स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट ने देखना, आप हमें कॉल करें, फंडिंग हासिल करें, स्किल भी हासिल करें, आसान से फुली ऑनलाइन कोर्सेज करें, असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है।
0: सो एक बार नंबर नोट करवा दो सर, तो कमाल करते तुसी अज बड़ी इन्फॉर्मेशन नवी चेंजेस दे नाल लेके आए हो, कल नु होर भी असीं अपडेट करांगे इहनू विस्तार दे नाल, तो थोड़ा जिहा दसो नंबर दिओ।
1: बिल्कुल जी, नंबर जी है साडा 437-264-3171 437-264-3175। तुसी हुणे कॉल करो ते कल लाइक आपके डिटेल्स हम ले लेंगे थोड़ी सी, एंड देन आपको एस्टिमेट हम कल देंगे। 437-264-3171, कोई चलाकी नहीं है पहले की तरह, कोई इसमें हिडन चीज नहीं है पहले की तरह, और दूसरी बड़ी बात हमारी फीस सेम ही है, 199 शुरू में देनी है नहीं, काम होने के बाद। सिंपल सी एडुकेशन फंडिंग में डील करते हैं, किसी और फंडिंग में डील ही नहीं करते जहाँ पे चालाकी होती है। 437-264-3171
0: ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੋ। ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜੇ ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। 437-264-3175 437-264-3175 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ
0: ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ।

संस्करणले देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी थोड़े अंक संग है 24 घंटे सतो दिन हूं तक देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो हजारा ही बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके है ते करवा रहा है इम्पॉसिबल इज नथिंग तुसी भी अपने बिजनेस विच वादा करन वास्ते देश प्रदेश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ फॉर बुकिंग कॉल सजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: insuranceforyou.ca.
2: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो एम 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे हो तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो जाके देश प्रदेश टीवी नु कलेक्ट करो उसे सुन भी सकते हो वेख भी सकते हो 24/7 तुसी अपनी इंश्योरेंस बहुत ज्यादा पे कर दे हो वरी ना एक नाम असि तुम दस दे हां मनु शर्मा होरंदा ए तुहानू आटो होम कमर्शियल बिजनेस इंश्योरेंस दी बेस्ट डील लेके देंगे ए तुहानू अप टू 35% डिस्काउंट लेके देंगे जेकर तुसी प्रोफेशनल लोग हो जिवें इंजीनियर टीचर नर्सेस डॉक्टर आदि ता होर भी डिस्काउंट मिलेगा लंबे समय तो मनु शर्मा हो रही कम्यूनिटी दे विच आटो होम कमर्शियल दे बिजनेस इंश्योरेंस कर रहे ने अज ही इन्हां नूं कॉल कर लो 289

0: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
1: है। फिर कॉकरोच तो जो है वो हाले महीना पहला ट्रीटमेंट कराई सी।
0: मैं तेरा पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपर बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
1: पता किन्ना घर ही बेच दिंदे आ।
2: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नूं कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम।

0: 44515 8000।
1: मैंनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तो मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो, ते नाल ही विजिटर वीजा।

क्या बात है, बड़ा ही प्यारा गाना आपां हुणे हुणे सुनिया, बंद दरवाजे अमरिंदर गिल दी आवाज़ दे विच। इन्हां दे गाने हमेशा ही सारे सोहणे हुंदे ने, जदों मर्जी सुन लो ते बड़ा वधिया जिहा, बड़ी पॉजिटिव जी वाइब आ जांदी है, बड़ी सोहणी जी इन्हां दे गाने हुंदे ने सारे। उम्मीद है कि तुसीं अज दे प्रोग्राम दे विच चल रहे अपनी पसंद दे गाने ते नाल दी नाल प्रोग्राम नूं तुसीं इंजॉय कीता होएगा। मेरी मुलाकात तुहाडे नाल हुण कल नूं होएगी, दुबारा तो 3 बजे होएगी। ते फिलहाल मेरा टाइम हो गया कि हुण मैं वी तुहाडे तों इजाजत लवां। तुसीं अपना लोंग वीकेंड पूरा इंजॉय कर रहे हो ते होपफुली सारिआं दा हुण तक दा टाइम बहुत वधिया निकलिआ होएगा। ते कल नूं फिर तैयारी तुसीं जरूर कर लो अपनी, बैक टू बेसिक्स, बैक टू अपने डेली रूटीन दे विच आउण दे लई। ते उम्मीद है कि सारिआं दा वीकेंड वधिया निकलिआ, एंड आने वाले वीक की शुरुआत तुहाडे साडे नाल हो ही रही है। तो फिर उम्मीद है कि सारे ही उहदे लई वी तैयार बर तैयार होणगे। तो मेरी मुलाकात जिवें कि हर रोज़ की तरह कल नूं फिर तो होएगी 3 बजे। तो फिलहाल मैं मनप्रीत कौर तूर इतों ही तुहाडे तों इजाज़त लैनी हाँ। लास्ट फरमाइशी गाना मुहम्मद सिद्दीक एंड रणजीत कौर जी की आवाज़ दे विच छड के तुहाडी जा रही हाँ। ये भी तुसीं इंजॉय करो ते मैनूं इत्थे इजाज़त दिओ। कल नूं मिलांगे, हसदे रहो, मुस्कुराउंदे रहो, इंजॉय करो एंड गड्डी बड़े ध्यान दे नाल ड्राइव करो। मैनूं इजाज़त दिओ, सत श्री अकाल।